0: के पाजो तू म पर पर म ये लुगी किद में गेंगो ने अगुएरा पेगी साइज चम मेरे मो मेरे मी की गिन कि किद में रोमु नंग चम पिले म मेगी वटी का बिनो कि डॉक्टर ही पले म ठीक नि जतिरा
1: Pingin ma pol kupe ke Lilian Naume ina ma chim jera bira bira beach a beach a bora beach la der jera chel unyo jera bira beach a beach a bungwe na boro jero a chela beach el jero